थम जी ननकाने जी करतारपुर जी श्री बाबे नानक डेहरे जी तखत केसगढ़ साहिब अन

जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित ध्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जह

त्वप्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गद हा विभूत दारी गिद्धुआ मसान बास करे करत है।

करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कणों का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोड उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब बच उड़ जाहेंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, के तक प्रतच हो बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जिस तेज रीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत, किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग वासी किते मदीना मकानी वासी, के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त, किते सुअ पे चढ़त किते दुह को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत, किते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानव वटे बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जाप सीखा सुहारे, चंदन लगाए हारे, चुआचार बोझ हारे, बाहन चढ़ाए हारे, लापसी गा हारे, गोरन मनाए हारे, मड़ी मटली बहारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाए हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित

अमर नंग न बर नंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग न भय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग।

नहु नेह ग्रहंगहु देह दुखंगहु औषधि रोग के सुख सुखंगहु देव विद्या कहु दैत बानी कहु जछ गंधर्व किन्नर कहानी कहु राजसी सात की तामसी हो कहु जोग विद्या।

जय अंशे जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धनम ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान जय जात बात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म।

तीन जमीन जमा जय रचें सर्वमकी नमका जय राग न रूप न रेख रुखं जय ताप न साप न शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भुयं जय खेद न भेद न छेद क्षयं जय जात न पात न मात पितं जय रचयं छत्री छत्र चितं जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वारख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचिव रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु बिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से तज उत भुजंग किए देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद क्षयंग जय जम्पह किन्नर जाच जुवंग नर नारन पुंसक जाह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथा दिग पाद भड़ंग भूत भवेक भवान तुवंग जय अंडज से तज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास कियो फल फूल कली वो मेरा काश निवास छितंग रज रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई

गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद भेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सत सिंध।

है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानिए, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेक है, अधोग ताग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है, न तात मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अदेक सेक भेक है सदीव विश्ववर्ण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववर्ण है, जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है, अद्वैक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में, विशेख आन मानिए, न जंत्र में, न तंत्र में, न मंत्र बस आवई।

आद है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मात है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, न दुख है, न दाग है, न द्वैग है, न दी है, न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभीक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है।

अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैग है न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानिए, अभूम बिज है सदा छिज तेज मानिए, न आद है न व्याद है, अगाद रूप लेखिए, अदोख है अदाग है, अच्छे प्रताप देखिए, न कर्म है न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है, न

सन खाओ सन के जनंदन पाव ही ना सेब जा छके नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र मुख चार सर्व सबद बतार के तरजा पही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मूर्त ताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज दिराज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानु न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैसरंगे विखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख ब्रह्मनाथ, दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत मय जयगाथ। भूत बब भवेख।

वेद व्यास करे गई दिन गोटे इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव न पावई शिव रुद्र ओमुख चार। कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुंचकृत भयमुख चार। आद अंत न मध जापो भूत बब भवान, सत दुआ पर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सब नहीं पाई ये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मोन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोद सोद थके महासुर

सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ शिष्ट को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है कवन।

जाफरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण धमके अतिथित झमके फूंग फनंग जय जय हो सी मखा सुर मर्दन रम कबर्दन दैत जिणंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण दुजा फुरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मखा सुर मर्दन भूमा का सल उर्दे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाश।

चाचर चमकारं चुरहारं धूम धूम कारण द्राप मथे दाढ़वी प्रतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रत्येजन अष्ट भुजे जय जय हो से मैं खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे घुंगुरु घमंगण शस्त्र झमंगण फणियर फुंकारण धरम दुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना है अगमथा है एक वृते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकिणी प्रसोहन सुर

सुथत समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी सत्व करखण आद नील गाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगे तुंद तुरंगण तिच्छ सरे करक सा कुठारे नरक निवारे अधम उतारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर नंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुवासे दुष्ट कसे।

लाजे गिल बिक भाजे सखूब राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय होशि मेघा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृत्ते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय उसे मेघा सुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रिया।

दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्ध लगा है दुख हरे गंजन कुमार ने अतल प्रवाह ने

मते अष्टाय चमकण सत्र झमकण दामिंदम कणाद वृते डुकडुकी दमंके बाग बबंके हुजा फरंके शुद्ध कते जय जय उसी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दूष प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे।

विभर खंड दुर्जन धर खंड दुर्लमर खंड धरम दुजे धूमराज विदुन संसुण चुन संसुंभ पाद निशुंभ मथे जय जय हुसी मैखा सुर मर्दन आद अनिल गाद कथे। त्व प्रसाद पाधड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम क्यों।

दुख दो कर हैत जह नेत नेत सब भेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सेवंत कई पलट सूरत सिजदा कर।

निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद वरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अविचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग विरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजता। जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोख तहता उतार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत। त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करानित संतु बारग नीमन गारे पज पशु नग नाग नाधिव सर्व समय सबको प्रतपार। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत न हर। दाहत है दुख दोखन कौल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार। पार न पाए सके पद मापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज रूख रुहान की रोज नटार। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवे भगवान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लख्यो भ्रम से भरमाए। वेद पुराणक देव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सुन श्री पद मापत पाए। आद अनंत का तद वेक्सो भूत भविख भवान अभय है अंत भी नातम आब दाग दुख छिद्र अक्षय है। लोकन के करता हरता जल मैथल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है देह विहीन स्नेह सभूत नेह विरक्त केह अच्छा है। जान को देद जान को देद जमीन को देद जमान को दे है काहे को डोलत है तुम रिशद सुंदर श्री पदमा पतल है। रोकंते अर सोकंते जल जोकंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत तन एक न लागन पावे। राखत है अवनो कर दे कर पाप संभूहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सौ सौ पेट ही के पट बीज बचावे। जच भुजंग सोदान देव भेव तुम सब ही कर ध्यावे भूमा काश पताल रसातल जच भुजंग सब सरण्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारग से सब हूँ मिल गायो वेद कते बन भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन में जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान भेद नृपान सब पचहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आदा नादा गाद बेगद वेग जप्यो तिन ही गुलतारे। तीर्थ कूट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष तबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कूट करे अष्टांग धरे मोहन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल बजे बिन अंत को अंत के।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल हैं। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया हैं। कटैया जम जाल हैं। युद्ध के जतैया।

वह गुला हिमाल देव गोर कर दे जी गुण गाव तेरे नाम है जोग जोग साध पौन साधना कि देख बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने।

जंत्र हो न जात जा के बाप हो न मायता के भूरण प्रभा के सो छटा के अनमानिये तेज हूँ को तंत्र है के राज से को जंत्र है के मोहने को मंत्र है ने जंत्र के कजानिये तेज हूँ कतार है के राज से को सार है के सुधता को घर है के सिद्धता के सार है कामना की खान है के साधना के

दुष्ट दोख ते लिहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अलदुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बा

हों जग माहे जो तह प्रभु को ध्याई है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है व्यभिचार कृष्णा है जलते

पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छै सकै न कोई सम सतरै सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद।

ठाकुर द्वारे तो वापस आए की वेख्या वो सिंह चढ़ाई कर गया पिछो सिंह उन्हां दा शरीर सांभण वास्ते आ गए इन्हां दे कन्नां विच इक्को गल गूंजी जांदी है जाओ दर्शन नहीं जे देर लग्या इन्हां ने पुछिया कौन सी कहिंदे ए कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ओ सिख सी जिहदी रसना तों कदे बाणी नहीं सी विसरदी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन्हां नूं बहुत प्यार करदे सी कहिंदे अच्छा इन्हां ने सोचिया कहिंदे आपां जल नहीं छकाया पाप घट लिया सिंह वो गुरु के लाडले सिख नूं लै के श्री आनंदपुर साहब वल चल गए यादगार कई कहते उ संस्कार भी किया कई दा भी लिखते कहते हूँ ये सारा दिन बहिंदे है पर इन्हों का मन नहीं लगता एको आवाज इन्हों के कन्ना च गूंजती रही है जाओ दर्शन नहीं जे देन लग्या वचन हो गया ना पूरे का पूरे का वचन कदे भी विरथा नहीं जाता पूरा कौन है इन्हें पूरे नूं पा लिया कहिंदे रायपुर की राणी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बेनती की भी रायपुर की धरती ते आण के संगतां नूं दर्शन बख्शो बहुत प्रेमी सी महाराज जी कहिंदे कलगीधर महाराज आए इन्हां दे मन विच फुरना आया भी जे रब दे दर्शन नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मना लईए गुरु ने दर्शन करा देने आ गुरु दे ते दर्शन करिए महाराज कथा कीर्तन करते ने संगतां नूं प्यार नाल उपदेश देंदे ने जदों ये फुल लै के महाराज वास्ते आए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उठ के चलदे दरबार विचों अंदर चले गए इन्हां नूं दर्शन ना दित्ते इन्हां दे कन्नां विच फिर आवाज गूंजी जांदी जाओ दर्शन नहीं जे देण लग्या कई दिन आउंदे रहे महाराज हर रोज इन्हां नूं दर्शन दित्ते बिना उठ के चले जांदे रहे इन्हां नूं पता लग्या भी अज महाराज ने चले जाना इन्हां ने सोचिया भी जे इदां नहीं दर्शन हो रहे राह च खड़ जांदे आ जिधर दी कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह लंघणगे राह च दर्शन कर लांगे पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी मौज दे खुद मालक होए ऐ महाराज दा काफला तुरिया सच्चे सतगुरु जानी जान वेख्या भी सोहिना मोहिना मोहरे खड़े है महाराज ने नीले नूं अड्डी लाई खेतां राही होते सारा काफला लंघन लगा पिछों सिंह नूं आवाज मारी कहण लगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कित्थे है कहिंदे जी उह ते उहनां दी मौज है कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी ते खेतां राही हो गए इन्हां दे कन्नां विच फिर उही शब्द गूंजिया भी जाओ दर्शन नहीं जे देण लग्या हुण कर्म कीता है कीते हुए कर्म नूं याद करदे आ नाले रोंदे आ भी दर्शन किदां होणा भी किसे ने कहा भी आनंदपुर साहब भी चले जाओ इन्हां ने जिन्नी माया सी ना पिंड पिंड खूलवाते भी एक सिंह प्यास दुखों साडे कोलों मरिया साडे कोलों पानी नहीं पिया होया पिंड पिंड खूलवाते भी कोई प्यासा ना रवे सारी माया खत्म करके आज दे हो गए ऐ महाराज दे दरबार वल नूं चल पए ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम गवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, सुहाओ पाई हुई बेअंत पुन्ना दी माफी। सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का करोड़ों बारी शुक्र शुकराना, महापुरख संत बाबा कुलवंत सिंह जी, संत बाबा राम सिंह जी, समुचे प्रबंधकों का धन्यवाद, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का करोड़ों बारी धन्यवाद। जे महाराज सच्चे पातशाह ने समा बख्शिया, कल रात फिर 9 to 10:30 to 11 तक इस तरह आप संतों के चरणों की हाजिरी भरेंगे। गुरु कलगीधर दशमेश पिता दी खुशियां आप रल मिल के इस तरह ही रवेंगे। महाराज रहमत कर, समा ते सवास बख्शिश कर, दया कर, अपने चरणों नाल इस तरह जोड़ के रखन, हुई भुलों की माफी गज बज के गुरफते बुलाओ।

मुसलमाना सिमत सरियत पड़ पड़ करे विचार बंदे से जिप वेज बंदी विकन को दीदार हिंदू साला ही साला है न दर्शन रूप अपार तीर्थ न व्यर्चा जागरवास बका जोगी सुन।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिन मिले सता तिनी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया।